0: ये है लाइका रेडियो। C5 proudly present हमारे राम, produced by Felicity Theatre, India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एस रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई, इवेंटिम अपोलो, हैमरस्मिथ, हमारे राम।
1: बुक योर टिकट्स नाउ ऑन eventimapollo.co.uk एंड यूज कोड hamareram10 फॉर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल शोज एंड टिकट।
0: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर रेडियो।
2: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
3: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
4: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. This is the largest commercial Asian radio network in the UK. Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Midlands, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@leicamedia.co.uk.
5: Leica Radio.
4: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: सुना रेडियो।
1: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथहॉल
2: Protected. कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर, यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स। सबके लिए कुछ न कुछ है। 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4-5AS पर। चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100। एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्राऑर्डिनरी।
3: 7 स्टेशंस, 1 पॉडकास्ट, 1 मोबाइल ऐप। Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116-471-0697 or sales@leicamedia.co.uk. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा।

चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

जुग जुग एको वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवर।

0: मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: New hits on Like a Radio.

0: Listen to the freshest hits added daily on Leica Radio.
1: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
2: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
3: खुद से भी ज्यादा।
1: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
3: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
1: क्या ये नजदीकियाँ बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT394.
4: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over, to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
0: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: शुगर 3 kg 399, लैला बासमती राइस 10 kg 1199, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 199, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 799 ग्राम 199, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
1: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN.
0: बिग डील्स, बिग सेविंग्स, व्हाइल स्टॉक्स लास्ट.
2: सिटी बॉन्ड ट्रैवल प्राउडली प्रेजेंट्स यात्रा टूर्स 2026.
3: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
2: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra tour.
3: Also explore 2026 cruises
2: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're Atoll Protective.
4: जी टीवी एच डी पर देखिए नई कहानी तू ही रे दिल में.
5: स्वाति, जब से लाइफ में आई है लाइफ ना कंप्लीट सी लगती है.
6: इतना ही प्यार हमेशा रहेगा ना संजय?
7: मगर नियति को क्या कुछ और ही है मंजूर.
8: वृंदा, तेरे सपनों का राजकुमार अब सच में तेरा होने जा रहा है.
7: 3 मासूम जिंदगियां किस्मत के जाल में.
4: तू ही रे दिल में रोज शाम 5 बजे जी टीवी एच डी पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 ऐप.
9: 105 शोज पूरा कर्या पछी हवे लेस्टर मां आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी नाटक.
10: जेज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रे जो हसबंड जी,
9: लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनो फुल डोज. 28 जून पीपल सेंटर लेस्टर मां बे शानदार शोज बपोरे 2:30 वागे अने सांजे 7 वागे. टिकट्स बुकिंग माटे कॉल करो मिस्टर B07860280655, मुंबई सैंडविच स्टेशन 07834832249 अथवा eventbrite.co.uk.
11: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
12: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken, with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app, where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount, plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
13: LemFi means quicker and safe way to send money.
14: LemFi means low transaction fees and great exchange rates.
13: LemFi means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LIKEUS.
14: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LemFi. Download the LEMFI mobile app today.
15: LemFi is registered by the FCA. T's and C's apply.
2: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में.
16: Location, location, location.
17: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
16: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
17: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
16: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
17: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
16: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
17: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
16: high appreciation
17: in Dubai.
18: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है.
19: Order online at pujasweets.com. From barfi, laddus, gulab jamun to samosa and gathia. From catering starters to dessert, Pooja Sweets and Savories.
2: अभी कॉल कीजिए 0116-202-1222 or visit Melton Road, LE4 5EA.
19: Pooja Sweets and Savories.
20: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
21: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: ब्रेकफास्ट विद डीप राजा।
1: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
2: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
1: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
2: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट हिल LE54UN।
1: बिग डील्स, बिग सेविंग्स, व्हाइल स्टॉक्स लास्ट।
3: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
4: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
5: Southall Travel at all protected.
6: ZTV HD पर देखिए नई कहानी तू ही रे दिल में।
7: स्वाति, जब से लाइफ में आई है लाइफ ना कंप्लीट सी लगती है।
8: इतना ही प्यार हमेशा रहेगा ना संजय?
9: मगर नियति को क्या कुछ और ही है मंजूर।
10: वृंदा, तेरे सपनों का राजकुमार अब सच में तेरा होने जा रहा है।
9: 3 मासूम जिंदगियां किस्मत के जाल में।
6: तू ही रे दिल में रोज शाम 5 बजे ZTV HD पर अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
11: The theatrical blockbuster Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding is back for a third season. This time there's a wedding, a secret and a murder.
12: OMG!
11: Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding 3, The Murder Mystery. As the celebrations begin, the truth turns deadly.
12: Murder Mystery!
11: In Leicester on the 4th of July at the Curve Theatre and Birmingham on the 26th of July at the Alexandra Theatre. Get your tickets now before the killer gets away. mkdw.co.uk, exclusive radio partner. Like a radio.
1: Packed for the trip? Gifts? Passport?
13: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
14: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
13: Simzy?
14: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
15: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com.
16: T's and C's apply.
6: ZTV HD पर देखिए साहस और जज्बे की नई कहानी
17: जगदत्री,
6: जिसमें माँ गौरी की सरलता बसती है।
17: माला ले आना। लाया जी।
6: वो वक्त आने पर महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती है।
18: टीम, गेट रेडी फॉर द एक्शन।
6: जिसके शांत स्वभाव में भी छिपा हो शेरनी का रूप, वो है जगधात्री। देखिए रोज रात 8:30 बजे ZTV HD और Z5 पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394।
0: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: किशोर कुमार की आवाज में ये क्लासिक गाना जिसे आपने सुना आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन से, ये है लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइक अ रेडियो इन मेडलैंड्स। और इन दो बैक टू बैक गीतों को सुनने के बाद आपके ढेरों मैसेजेस आए हैं। हमारे सत्यनारायण सैनी जी कहते हैं, ऋतु ये मेरा फेवरेट गाना है पल पल दिल के पास। तो चलिए, जिनका भी फेवरेट गाना है ये मैंने उन्हीं को दिया, जिसमें कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक था, फिल्म के हीरो थे धर्मेंद्र, साथ में थी खूबसूरत राखी। और उससे पहले आपने अवतार फिल्म का गीत सुना जो राजेश खन्ना की कमबैक फिल्म थी, जिसमें उनके साथ शबाना आजमी थी, म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और इस फिल्म ने भी कमाल धमाल मचा दिया था। और खास तौर पर इस गाने ने, जो बहुत सारे साथियों का फेवरेट है, लेकिन इस गाने को सुनकर एक और मैसेज आया है और ये मैसेज भेजा है पुरुषोत्तम कपिला जी। आपने कहते हैं, ऋतु जी सादर नमस्कार, ये सॉन्ग मैं हर रोज सुनता हूँ राजेश खन्ना और शबाना आजमी का, और इस सॉन्ग ने मुझे पागल बना दिया है। हाँ जी, आपने बताया है कि इस सॉन्ग को सुनने के बाद मतलब इतना पसंद है कि आपने जब आपका बेटा हुआ तो उसका नाम भी राजेश रखा उस समय पर, और आपका कहना है कि ये गाना बजाकर आपने मेरा दिन बना दिया। क्या बात है, खूबसूरत मैसेज भिजवा कर आपने भी मेरा दिन बना दिया। और ऐसे ही अनेकों मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके बारे में बात करूंगी। पर सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। और मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल मजे में हैं, बहुत खुश हैं और इंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ को। मौसम कल बहुत गर्म था, रात को सोने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में थोड़ी सी बिजली चमकी, थोड़ा सा पानी बरसा जिसने हमें थोड़ी राहत दी। लेकिन आज का मौसम कल से बेटर है, आज आसमान पर बादल छाया हुआ है, सूरज शायद आज कम देखने को मिले तो अच्छी ही बात है। लेकिन हमारे सूरज जी आ गए साउथ हॉल में, हमें सुन रहे हैं और कहते हैं हम सबको आपका इंतजार रहता है। तो सूरज आप मेरे शो में चमकते रहो, लेकिन आज प्लीज आसमान में मत चमकना क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत गर्मी कर दी है। चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे, गीतों बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो वन पाउंड आज आपको देगा 124.2 भारतीय रुपए, लेकिन हमेशा की तरह याद रखिए, ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। और इस महीने के अंत तक आपको मौका मिल सकता है जीतने का 75 पाउंड्स का वाउचर एवरीडे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 पाउंड्स। ऑल्सो अ ग्राम

0: gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate and for other legal requirements.
3: तो भाई फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और आज इजिप्ट ईरान की टीमें खेलेंगी. इसके अलावा ग्रुप जी से न्यूजीलैंड बेल्जियम की टीमें खेलेंगी. इसके अलावा आज उरुग्वे और स्पेन की टीम का भी मैच होगा या हो चुका है, मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ. लेकिन पनामा और इंग्लैंड की टीम, आज इंग्लैंड का मैच है तो आज एक बड़ा मैच है, तो आप सब मैच को जरूर इंजॉय कर रहे होंगे. लेकिन आपको बता दें कि भूलिएगा मत अपना 15 मिनट्स का फ्री लीगल एडवाइस विद अवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका.
1: दिस अपडेट वाज स्पॉन्सर्ड बाय रैक लॉ सॉलिसिटर्स. कॉल 0203 345 2000 और विजिट raklaw.co.uk. लाइका रेडियो.
4: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
5: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी.
4: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99. एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99. फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99. लैला बासमती राइस 10 kg 11.99. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99. फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399. पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99. फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1. Falcon Cash and Carry,
5: 82 Assistant Street, LE12JU, या Rowlatt Hill, LE54UN.
4: Big deals, big savings, while stocks last.
6: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में. रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई. इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ. हमारे राम.
7: बुक योर टिकट्स नाउ ऑन eventimapollo.co.uk एंड यूज कोड HamareRam10 फॉर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल शोज एंड टिकट.
6: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक Radio.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube, prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
7: City Bond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
10: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
7: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
10: Also explore 2026 cruises
7: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
11: The theatrical blockbuster Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding is back for a third season. This time there's a wedding, a secret and a murder.
12: OMG!
11: Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding 3, The Murder Mystery. As the celebrations begin, the truth turns deadly.
12: Murder Mystery!
11: In Leicester on the 4th of July at the Curve Theatre, and Birmingham on the 26th of July at the Alexandra Theatre. Get your tickets now before the killer gets away. mkdw.co.uk. Exclusive radio partner Leica Radio.
13: Sita aaj Lanka khud jalane aayi.
14: This July, witness the rise of a new force.
13: Hi boys.
14: Yash Raj Films presents Alpha. Alpha stars Alia Bhatt and Shalvari in a high-octane action spectacle alongside Bobby Deol and Anil Kapoor.
13: Jisse tumse baat karni hai, rok lo.
14: Produced by Aditya Chopra and directed by Shiv Rawal. Don't miss India's biggest female-led action event. Alpha in cinemas from the 3rd of July.
15: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beat.
12: pickles heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
15: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
12: Jaimin Foods desi cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
16: माँ को बोल कि जल्दी मच्छी लेकर आए।
17: हो अपनी माँ को बोलो मैं लेकर आऊंगा।
18: नाम परशुराम, अधर्म का करता हूँ काम तमाम।
16: अरे कहाँ हो तुम?
17: हो आलो आलो।
18: परिवार उसके लिए चारों धाम, बाहर वो है परशुराम।
19: Watch Mr. and Mrs. Parshuram Monday to Sunday at 7:30 PM only on Utsav Plus. Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE392.
6: Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network. The Leica Group. Home of Leica Radio and Leica Gold.
2: Leica Radio.
20: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी।
21: हमारे पति हमको छोड़ दिए।
20: गंगा जिसने अपने पति का साथ खो दिया।
21: दिल तो टूट भी गया
20: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
22: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
20: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी गंगा माई की बेटियाँ हर शाम 7 बजे ZTV HD पर अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT394.
23: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
24: 4 beers, please, garçon!
23: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
6: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7, and with your favourite presenters live? Get the tune-in details at leicagold.com. Feel-good track, brought to you by Dairy Valley.
25: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: नताजी और नितिन मुकेश की आवाजों में था ये गाना, और ये थी पूनम ढिल्लन और फारूक शेख की पहली फिल्म जिसमें खयाम का म्यूजिक था। और इस फिल्म में गीतों को गाने के लिए नितिन मुकेश को, स्पेशली इस गाने को गाने के लिए नितिन मुकेश को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नॉमिनेशन भी मिला था।
1: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो आज ये गाना आपने नितिन मुकेश की आवाज में सुना, और ये खास रीजन है क्योंकि आज नितिन मुकेश की बर्थडे है। यस, 27 जून 1950 में बॉर्न नितिन मुकेश आज 76 इयर्स के हो गए हैं, और एक जाने माने सिंगर हैं, जाने माने सिंगर के बेटे भी हैं, मुकेश जी के बेटे हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड के अभिनेता जो है नील नितिन मुकेश, वो उनके बेटे हैं। इन्होंने अपने फादर की लेगेसी को चुना और मुकेश जी का जो काम था उसे ही आगे बढ़ाया। 1980s और 1990s के दशक में इन्होंने एक सफल प्लेबैक सिंगर के रूप में अपनी पहचान बनाई, और उन्होंने खयाम, जिन्होंने उन्हें इस फिल्म में मौका दिया, उनके साथ साथ आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बप्पी लहरी, राजेश रोशन जैसे बड़े टॉप के म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ अच्छा काम किया। लेकिन उन्होंने खूब सारे भजन भी गाए जिसके लिए उन्हें याद किया जाता है। कई सारे स्टेज शोज भी उन्होंने किए हैं सक्सेसफुली, और उन्होंने दुनिया भर में अपने पिता मुकेश जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कॉन्सर्ट भी किया था, कल की यादें, जो काफी पॉपुलर हुआ था। बहुत सारे गाने हैं उनके अच्छे हैं। एक और गीत है जिनके लिए उन्हें याद किया जाता है, मैं सुनवाती हूँ क्योंकि आज उनका हैप्पी वाला बर्थडे जो है, तो उनके सारे फैंस की ओर से नितिन मुकेश जी को हैप्पी वाला बर्थडे, हैप्पी बर्थडे।
1: Like a radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: लीजिए, ये भी थी लता जी और नितिन मुकेश की आवाजें, और इसमें भी म्यूजिक था खयाम साहब का। और आपको बताया मैंने कि आज नितिन मुकेश की हैप्पी वाली बर्थडे है, और बहुत सारे साथी उन्हें हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स इज कमिंग विद मोर फ्लेवर्स एंड हेल्दी ऑप्शन इन अ कन्वीनियंट बाउल। कोका नूडल्स, क्विक एंड टेस्टी नूडल्स इन 12 फ्लेवर्स।
0: तो आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद रेडियो लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर ये है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और मैं ऋतु शर्मा हूं आपके साथ दोपहर के पूरे एक बजे तक। आपके मुझे ढेरों मैसेजेस मिल चुके हैं, तो चलिए एक नजर आपके मैसेजेस पर डाल ली जाए। चलिए फिर,
2: ये है लाइका रेडियो।
0: तो लीजिए, सबसे पहले मैसेज भेजा है विक्रम जगदेव आपने। बड़े दिनों बाद आज आपका मैसेज आया है और बहुत अच्छा लगा है, पुरानी यादें ताज़ा हो गई जब हम साथ किया करते थे काम, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक है और गीतों को पसंद कर रहे हैं, सो थैंक यू आपके मैसेज के लिए। इसके अलावा कंवल जी, बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। प्रज्ञा साथ दे रही हैं, हमारे गिरीश आनंद जी भारत से हैं, अर्जुन जी हमारे साथ हैं, महेंद्र जी साथ हैं, संध्या जी, हमारे जय किशन वाला जी, आपका मैसेज आया है और आपने लिखा है कि आज आप 44th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ऐसे करते हैं कि अगला जो गाना है ना वो बिल्कुल आप दोनों को ही डेडिकेट करते हैं, और हमारी ओर से आप दोनों को आज आपके वेडिंग एनिवर्सरी 44th वेडिंग एनिवर्सरी की ढेरों ढेरों ढेरों बधाइयां। और ये मैसेज भेजा है राजेश जी आपने, थैंक यू, आपने शनिवार की शुभकामनाएं दी हैं, और आजकल इतनी सारी चीजें चल रही हैं, आपने एक विचार शेयर किया है कि हर असफलता अगली बार बेहतर प्रयास करने का कारण और अवसर देती है, और यही सफलता को बनाता है। वेल सेट, बिल्कुल सही कहा, साथ देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फारूक जी, रोशनी जी, हंसा जी, मालती जी, हरीश खत्री जी, दिनेश पोपट, मोहम्मद अयूब, थैंक यू दिव्या जी, योगेंद्र जैन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड हमारे साथ पुरुषोत्तम कपिला जी, आपने भी बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स लिखकर भेजी हैं, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सत्यनारायण सैनी जी भारत में, महेंद्र पटेल जी क्रोइडन में, इस्लाम में, सुरजीत जी एंड मृदु जी, आप लिखती हैं कि अच्छी भूमिका, अच्छे व्यवहार और अच्छे विचार वाले लोगों को हमेशा ही याद किया जाता है, मन में भी, शब्दों में भी और जीवन में भी। बिल्कुल सही बात आपने हमारे साथ शेयर की है, थैंक यू। इसके अलावा है हमारे साथ किशोर लाडवा जी, जासू जी, नरेंद्र बागिया जी एंड सूरज फ्रॉम साउथ हॉल लिखते हैं कि मैं फाफड़ा और जलेबी जलेबी बनाते हुए आपको सुन रहा हूं, और साथ में है कैलाश, विशाल, भानु, हेरू, जयमाला, सभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, साथ देने के लिए धन्यवाद। एंड ऑफकोर्स हमारे शेखर अनन जी, अनिल सोनी जी, मिसेस पे के छियान सहर जी, फरीदा जी, उलाश तोची, बहुत लंबी लाइन है जिसे मैं आगे बढ़ूंगी, लेकिन फिलहाल ये बता दूं।
2: Across the Leica Radio Network, this is Ritu Sharma. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: अगर हॉलीडे जाने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि Southall Travel को याद रखिए, और अब दुबई से रेस्ट्रिक्शंस भी हट चुके हैं, तो अगर आप दुबई घूमना चाहते हैं तो Southall Travel को अच्छी डील्स के लिए फोन कीजिए अभी ऑन 0208-574-8410 पर, और ये सब एट ऑल प्रोटेक्टेड है।
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Ritu Sharma.
3: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
4: Relax, I've booked the Uber already.
3: But how? My roaming isn't even working yet.
4: I switched to Simzy before we left London.
3: Simzy? Since when are you the tech expert?
4: Since I decided I want a stress-free holiday.
5: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable dates in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
6: T's and C's apply.
4: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
6: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
6: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
6: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
7: ZTV HD par dekhiye nayi kahani Tu Hi Re Dil Mein.
8: Swati, jab se life mein aayi hai, life na complete si lagti hai.
9: Itna hi pyar hamesha rahega na Sanjay.
10: Magar niyati ko kya kuch aur hi hai manzoor?
11: Vrinda, tere sapno ka rajkumar ab sach mein tera hone ja raha hai.
10: Teen masoom zindagiyan kismat ke jaal mein.
7: Tu Hi Re Dil Mein. Roz sham 5 baje ZTV HD par. Available on Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 and Z5 app.

0: Asha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ अपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलिडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
2: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free, butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
3: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
4: ये है लाइका गोल्ड

0: पंचमदा की बर्थ एनिवर्सरी है। आज ही के दिन यानी कि 27 जून 1939 में कोलकाता में इनका जन्म हुआ था और ये अपने जमाने के महान संगीतकार आर डी बर्मन के बेटे थे। सभी इन्हें प्यार से पंचमदा बुलाते हैं, हम जानते हैं, और एक हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा जादुई सितारा है जिन्होंने उस जमाने के म्यूजिक की डेफिनेशन ही बदल दी। उन्होंने हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में वेस्टर्न म्यूजिक को इस तरह से मिलाया कि आज भी उनके गाने हर जनरेशन की जो प्लेलिस्ट है उसमें टॉप पर रहते हैं। आप सब उन्हें पसंद करते हैं, इसलिए आज कुछ गाने उन्हीं की फिल्मों से उन्हीं के म्यूजिक पर सुनवाऊंगी और कुछ बातें भी उनके बारे में बताऊंगी। जैसे कि सबसे पहले शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि हम राहुल देव बर्मन को पंचमदा क्यों कहते हैं, तो बताऊं इसके पीछे दो वजह हैं। पहली ये कि जानने वाले कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो जब भी रोते थे तो संगीत के पांचवें सुर तक उनकी ध्वनि निकलती थी, आवाज़ निकलती थी। कहते हैं ना, क्या पंचम सुर में रो रहा है, इतनी जोर से रो रहा है, और बस यही कहते थे ये तो बहुत पंचम सुर में रोता है, और कहते कहते उनका नाम पंचम ही पड़ गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पंचम नाम उन्हें अशोक कुमार ने दिया था जब उन्होंने नए नन्हे राहुल को सरगम का पांचवा सुर पा पा बार बार गुनगुनाते हुए सुना, तो उन्होंने कहा कि इसका नाम पंचम रखना चाहिए क्योंकि ये बार बार पा पा बोल रहा है। एनीवेज, बात कौन सी सही है ये तो नहीं पता, लेकिन आज कुछ किस्से मैं आपको जरूर सुनवाऊंगी। आप हमारा साथ देते रहिए, एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुनवाने वाली हूँ आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 124 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर आपको ब्रांच योनो ऐप के थ्रू और ऑनलाइन करवा सकते हैं, और 7 जुलाई से यानी जुलाई के एंड से पहले पहले आप 75 पाउंड का वाउचर भी जीत सकते हैं एवरीडे जब आप 1000 पाउंड से ज्यादा ट्रांसफर करते हैं, या फिर एक गोल्ड कॉइन आपको 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन मिल सकता है जब आप 2000 पाउंड से ज्यादा ट्रांसफर करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates. Brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
0: तो आज पनामा और इंग्लैंड के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होगा, और आपको बता दें कि इसके साथ साथ 15 मिनट की फ्री एडवाइस लेना बिल्कुल मत भूलिए हमारे स्पॉन्सर्स रैक लॉ से जब आप मेंशन करेंगे Leica.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rivko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting Desi twist. Coming to the Belgrade Theatre Coventry 16th to the 19th of July. Click rivkotheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, panto fun for all the family.
4: Radio partner Leica Radio.
5: ZTV HD पर देखिए नई कहानी तू ही रे दिल में।
6: स्वाति, जब से लाइफ में आई है लाइफ ना कंप्लीट सी लगती है।
7: इतना ही प्यार हमेशा रहेगा ना संजय?
8: मगर नियति को क्या कुछ और ही है मंजूर?
9: वृंदा तेरे सपनों का राजकुमार अब सच में तेरा होने जा रहा है।
8: 3 मासूम जिंदगियां किस्मत के जाल में।
5: तू ही रे दिल में रोज शाम 5 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394 and Z5 app.

0: सत्य पे सत्ता फिल्म का गाना आवाज किशोर दा की, और आज हम यादें में याद कर रहे हैं आरडी बर्मन को, क्योंकि आज है उनकी बर्थ एनिवर्सरी। क्या आप जानते हैं कि आरडी बर्मन ने सिर्फ 9 साल की उम्र में अपनी पहली धुन बनाई थी? यस, एक गाना था ए मेरी टोपी पलट गया, जिससे उसके पिता ने फिल्म फंटूश, यानी कि एस डी बर्मन ने इसे फिल्म फंटूश में 1956 में इस्तेमाल किया था। और एज ए इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म आई थी छोटे नवाब, जो 1961 में आई थी, लेकिन उन्हें असली पहचान फिल्म तीसरी मंजिल से मिली, जिसमें गाने बनाए थे उन्होंने आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, और भी कई गाने जो बहुत बड़े हिट हुए थे। लेकिन आपको बता दें कि पंचम दा सिर्फ एक संगीतकार नहीं बल्कि एक साउंड साइंटिस्ट भी थे, और जो हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र जो होते हैं ना, वो सिर्फ उन पर ही निर्भर नहीं रहते थे, बल्कि उन्होंने गानों में म्यूजिक पैदा करने के लिए कई अनोखे एक्सपेरिमेंट किए हैं। जैसे कि ये जो गाना आपने सुना ना, दिलबर मेरे, इस गाने में जो बैकग्राउंड में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है ना, पंचम दा ने कांच की बोतलों पर चम्मच मारकर वो आवाज निकाली थी। गानों में रिदम लाने के लिए वो कभी भी सैंड पेपर को रिगड़ते थे, कभी कंघी के दांतों पर उंगली फहराते थे, और आपको पता होगा कि फिल्म पड़ोसन के गाने में तो उन्होंने एक अजीब सी गुड़गुड़ की आवाज भी निकाली है, जो पंचम दा ने पानी के गरारे करते हुए रिकॉर्ड की थी। ओ माई गॉड, कैन यू बिलीव दिस? लेकिन ऐसा लोग कहते हैं उनके बारे में। तो चलिए, इतनी बातें की हैं तो एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुनवाती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि प्रोग्राम के अगले हिस्से में एक कॉम्पिटिशन भी है, तो साथ जरूर देते
1: रहिए। गुलाब जामुन, रसमलाई, मोतीचूर लड्डू एंड मच मोर, विजिट happyhalwai.com।
2: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma. Leica Extra Podcast Update.
0: तो इस बार का नया लाइका एक्स्ट्रा का पॉडकास्ट निकल चुका है, एपिसोड रिलीज हो चुका है, जिसका टॉपिक है ट्रेडिशंस एंड टैबूज, और जिसे होस्ट किया है रेडियो वाली ने। और हमेशा की तरह आपको बता दें कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है स्पॉटिफाई पर, यूट्यूब पर, या फिर जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से, वहां जाकर आप लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट सुन सकते हैं।
2: This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app, or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Leica Radio.
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है तां एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिने सब नु हसा हसा के लोटपोट कीता, ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
6: की कह रहे हो?
7: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो बड़ी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
8: पर टिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया।
5: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ए लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
9: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybourne Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
6: The theatrical blockbuster Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding is back for a third season. This time there's a wedding, a secret and a murder.
10: OMG!
6: Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding 3, The Murder Mystery. As the celebrations begin, the truth turns deadly.
10: Murder Mystery!
6: That's in Leicester on the 4th of July at the Curve Theatre and Birmingham on the 26th of July at the Alexandra Theatre. Get your tickets now before the killer gets away. mkdw.co.uk. Exclusive radio partner Leica Radio.
11: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
12: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
11: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
13: बी पार्ट ऑफ अ हिस्टोरिक ग्रैंड ओपनिंग.
14: एक्सपीरियंस द न्यूली इनॉग्रेटेड BAPS स्वामीनारायण मंदिर इन पेरिस, अ वंस इन अ लाइफ टाइम स्पिरिचुअल जर्नी.
13: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
14: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
13: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
2: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
15: जी टीवी HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां. मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से.
16: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
17: खुद से भी ज्यादा.
15: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में.
17: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है.
15: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे जी टीवी HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394.
18: You're both on the same road, same tarmac, same rules, just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way, they're on their way, just like you. So use your mirrors, check before you maneuver, and be aware of motorbikes, because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety, it's on all of us. National Highways.
2: Listen back to your favorite shows by logging on to LeicaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at LeicaRadio.com and the Leica Radio mobile app.
19: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Europe to faraway places, the same delicious Indian food. Wherever you go, that's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: ये गाना था मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, और ये हमें बताता है कि न सिर्फ किशोरदा के साथ बल्कि रफी साहब के साथ भी उन्होंने बहुत ही अच्छे गाने बनाए हैं, या फिर कह सकते हैं कि 70s और 80s का जो दौर था वो पूरी तरह से पंचमदा के नाम रहा। उन्होंने आशा भोसले से शादी भी रचाई, किशोर कुमार लता जी के साथ मिलकर सैकड़ों ब्लॉकबस्टर गाने दिए, लेकिन 80s के आते आते उनका जो दौर था थोड़ा धीमा पड़ गया था। हालांकि 90s में जो फिल्म आई थी 1994 अ लव स्टोरी, उससे उन्होंने कमबैक किया था और एक बार फिर से साबित कर दिया था कि राजा हमेशा राजा ही रहता है। उनकी धुने एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, या फिर कुछ ना कहो, क्या गाने हैं, आज भी सुनकर एकदम दिल खुश हो जाता है। लेकिन एक सैड बात ये थी कि जब ये फिल्म आई थी 1942 अ लव स्टोरी, इसकी रिलीज और इसके गीतों की सक्सेस को पंचमदा नहीं देख पाए। इस फिल्म की रिलीज से पहले ही पंचमदा को दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन पंचमदा हमारे बीच नहीं है, पर आप किसी भी म्यूजिक शो में चले जाइए, कोई भी फेवरेट्स की लिस्ट उठा लीजिए, उसमें पंचमदा के गाने होते ही होते हैं। आज के जो भी छोटे बच्चे हैं जो गीतों को पसंद करते हैं, उनके जो सॉन्ग सेलेक्शन है उसमें पंचमदा के गीत हमेशा ही होते हैं। और आपके भी ढेरों मैसेजेस मिले हैं कि आपको बहुत मजा आ रहा है पंचमदा के गीतों को सुनने का, तो चलिए एक और गीत सुनवाती हूँ आपको अब से बस थोड़ी ही देर में।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 124.8 भारतीय रुपए, 367 पाकिस्तानी रुपए एंड 162 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LEICA Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LEICA Radio.
0: So gold rate is 99.4 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: Leica Radio.
3: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
3: समारा ब्लैक टी 1 kg 399, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 1499, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 399, लैला बासमती राइस 10 kg 1199, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 199, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 799 ग्राम 199, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, Falcon Cash and Carry,
4: 82 Assistant Street, LE12JU, या Rowlett Hill, LE54UN.
3: Big deals, big savings, while stocks last.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50% amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
8: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamari Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
7: Exclusive radio partner, Leica Radio.
9: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान। देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410। That's 8574 8410.
10: Safo Travel. Auto protected.
11: Welcome to the jungle.
12: Film बिल्कुल fake.
11: हमारी film army वाली.
13: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
12: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
11: और स्टार कास्ट है
12: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
14: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
12: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ।
14: चलो तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
15: किस लिए फिल्म में?
16: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame-grilled chicken to mouth-watering wraps, it's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV 11 5BZ. Pepe's Piri Piri, Pepe-licious.
17: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over, to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
18: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply for quick reply, affects your concentration, and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
19: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine, but mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard, help!
20: Okay, help's on its way.
21: Grab my hand!
22: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
23: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
24: It was just another day. A familiar drive. Through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions. Especially on country roads, where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
25: Leica Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. The Ritu Sharma Show. Featuring classics non-stop with Ritu Sharma on Leica Radio.

सितमगर फिल्म से था ये गाना, जिसे डेडिकेट करते हैं गिरीश जी आपको, कहते हैं मेरा बहुत फेवरेट गाना है। और इन गीतों को सुनकर बस यही लग रहा है कि क्या कमाल का म्यूजिक तैयार किया है आर डी बर्मन ने, न सिर्फ किशोरदा। This is Laika. न सिर्फ मोहम्मद रफी बल्कि मुकेश जी के साथ भी उन्होंने कुछ ऐसी अमर धुनें बनाई हैं कि जो जब बनती हैं तो दिल खुश हो जाता है। कुछ ऐसा ही है ये गाना।

आज कुछ गाने आरडी बर्मन के म्यूजिक पर मैंने आपको सुनवाए। गाने तो बहुत सारे हैं, जी तो जा रहा था और बहुत सारे गीत सुनवा दूं, लेकिन समय नहीं था। ये गीत होगा आज की यादें का आखिरी गाना, और इस गाने के बाद हम आपसे मिलेंगे प्रोग्राम के नेक्स्ट वाले आवर में, और एक कॉम्पिटिशन भी साथ में खेलेंगे। थैंक यू साथ देने के लिए।

0: रहे हैं आज के थ्री वर्ड्स गेम का। लेकिन लेकिन लेकिन आज हम थ्री वर्ड्स गेम नहीं खेल पाएंगे क्योंकि आज इस वाले आवर में एक कॉम्पिटिशन है, लेकिन कल पक्का प्रॉमिस जरूर खेलेंगे। तो आज का कॉम्पिटिशन क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। लाइका रेडियो नेटवर्क जेज एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर आपको मौका देने जा रहे हैं दो टिकट्स जीतने का उस गुजराती स्टेज कॉमेडी शो का जिसका नाम है सखना रहेजो हस्बैंड जी, जिसमें लीना शाह और समीर शाह ने काम किया है। ये शो संडे 28 जून को 2:30 यानी कि 2:30 बजे से एंड 7 PM एट पीपल सेंटर इन लेस्टर में होगा। और आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेजना है हस्बैंड। टिकट्स जो हैं वो 7 PM शो के लिए वैलिड रहेंगे और ये टिकट्स जो हैं वो सिर्फ लेस्टर वेन्यू के लिए हैं। और आपको टिकट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे उसी दिन जिस दिन शो है, वहाँ पर वेन्यू पर जाकर रिसेप्शन पर आपके टिकट्स वहाँ आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी। तो देर किस बात की है, जल्दी से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज दीजिए हस्बैंड, उसके साथ साथ अपना प्यारा नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस भी। जल्दी कीजिए, नंबर मैं आपको बताती हूँ।
1: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404 793 719।
0: और इस वाले आवर के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि कौन बने हैं विनर और कौन जा रहे हैं लेस्टर इस पॉपुलर गुजराती शो को देखने।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 124.2 भारतीय रुपए। ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग दी योनो SBI UK मोबाइल ऐप। और इसके अलावा आप एंड जून के एंड तक 75 pound का वाउचर जीत सकते हैं एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds। ऑल्सो 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
2: Leica Radio.
3: City Bond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
4: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
3: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
4: Also explore 2026 cruises.
3: From Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
5: The theatrical blockbuster Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding is back for a third season. This time there's a wedding, a secret and a murder.
6: OMG!
5: Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding 3, The Murder Mystery. As the celebrations begin, the truth turns deadly.
6: Murder Mystery!
5: That's in Leicester on the 4th of July at the Curve Theatre and Birmingham on the 26th of July at the Alexandra Theatre. Get your tickets now before the killer gets away. NKDW.co.uk. Exclusive radio partner. Like a radio.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
8: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: Welcome to the jungle.
7: Film bilkul fake.
9: Hamari film army wali.
10: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
7: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
9: स्टार कास्ट है
7: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
11: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
7: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ।
11: पहले तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
12: किस लिए फिल्म में।
13: This summer, will your child just use technology or learn to build it? At RoboThink Summer Camps, children create robots, learn coding. Use code LAIKA10 for 10% off full week bookings. Visit book.robothink.com.

0: Lycra.co.uk/Lycra or call 07533-065-549.
1: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सप्टेम्बर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 02037736333 Mantra Holidays. What's your travel mantra?
2: Lester Mellor is back with exclusive radio partner Lycra Radio. August 15th and 16th at Abbey Park, Leicester.
3: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.

0: थी आयशा भोसले और एस पी बाला सुब्रमण्यम की आवाजें, तड़प तड़प के जीते तड़प तड़प के मरते। फिल्म का नाम एक ही भूल और ये थी जितेंद्र और रेखा की फिल्म। और आप सब जानते हैं कि जितेंद्र हमारे इस बार के आर्टिस्ट ऑफ द वीक है। आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं, प्रोग्राम में कंपटीशन चल रहा है और इसीलिए आज हम अपना 3 वर्स गेम नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन कल हम जरूर खेलेंगे। लेकिन अब शुरू होता है आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला। और आज के कंपटीशन के विनर कौन बनते हैं उनका नाम मैं अनाउंस करूंगी शो के खत्म होने से पहले। लेकिन फिलहाल आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: जी हाँ, आवारा फिल्म से था ये गाना, जो था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना, और आप सबने इसे पसंद किया है, सो थैंक यू सो मच। एक और गीत इंतजार कर रहा है, लेकिन शो में कंपटीशन भी चल रहा है, और आपको बता दूं कि ये कंपटीशन लेस्टर के लिए है। जी हाँ, लेस्टर में जो शो होने जा रहा है, सखना रहे जो हस्बैंड जी, उसके दो टिकट्स हम आपको देने जा रहे हैं। लाइका रेडियो एंड जैज एंटरटेनमेंट आपके लिए लेकर आए हैं ये गुजराती स्टेज कॉमेडी शो, जिसमें लीना शाह और समीर शाह ने काम किया है, और ये होने जा रहा है संडे को 28 जून, यानी कि कल, और ये होगा पीपल सेंटर इन लेस्टर। तो अगर आप लेस्टर जा सकते हैं, आपको गुजराती समझ में आती है, तभी आप पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि टिकट्स आपको वेन्यू पर ही मिलेंगे, यानी कि शो के शुरू होने से पहले आपको वहां जाना होगा और आपको अपने टिकट्स कलेक्ट करने होंगे और मजे के साथ शो को देखना होगा। तो अगर आप लेस्टर जाकर इस शो को देखना चाहते हैं, तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए, अपना नाम, अपना टेलीफोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस और हस्बैंड लिखकर हमें भेज दीजिए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर।
1: Feel Good Track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: The Ritu Sharma Show on Leica Radio. Leica
0: Radio. चलिए फिर सुनवाते हैं आपको आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना।
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with

0: लता जी और गीता दत्त की आवाजों में था यहूदी फिल्म का ये गाना, जो कि देव कुमार और मीना कुमारी की एक बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म थी, जिसमें म्यूजिक था शंकर जय किशन का, और ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना। और प्रोग्राम में कंपटीशन चल रहा है, और ये कंपटीशन लेस्टर के लिए है। अगर आप लेस्टर जा सकते हैं शो को देखने के लिए, तभी पार्टिसिपेट कीजिएगा, और कुछ ही देर में बताऊंगी कौन बने हैं आज के इस कॉम्पिटिशन के विनर।
1: South Hall Travel.
0: लेकिन उससे पहले याद दिला दूं कि साउथ हॉल ट्रैवल एक बार फिर से आपके लिए अच्छी डील्स लेकर आए हैं दुबई के लिए, क्योंकि अब वहां से रेस्ट्रिक्शंस उठ चुके हैं, तो आप जा सकते हैं। अच्छी डील्स चल रही हैं साउथ हॉल ट्रैवल पर दुबई के लिए। आप उन्हें फोन कीजिए 0208-574-8410 पर। ऑल एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Ye hai Laika Radio.
2: Laika Radio. Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
3: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
2: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
3: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
2: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
3: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
2: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
4: Packed for the trip? Gifts? Passport?
5: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
4: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
5: Simzy?
4: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
2: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.

0: ये थी आवाज नितिन मुकेश की और साथ दे रही थी लता जी। और आज आपको मैंने बताया हमने सेलिब्रेट किए नितिन मुकेश की बर्थडे और इसके अलावा आज आरडी बर्मन की बर्थडे भी बर्थ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की आज की यादें में। और आप सबके ढेरों मैसेजेस मिले हैं, आपने गीतों को पसंद किया है, साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय आ गया है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कमल जी से बात कर ली जाए।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes. Women's cricket updates presented by Carmel Prabhakar are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
2: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
0: तो लीजिए T20 वर्ल्ड कप का अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कमल जी। हेलो कमल जी, बताइए क्या है आज आपके पास हमारे साथ शेयर करने के लिए?
3: वेरी गुड बट अमेजिंग डे अगेन बट वेरी वेरी हॉट और बहुत ही गर्मी चल रही है आज तो। बट कल एक्चुअली एक मैच था विच इट वॉज स्कॉटलैंड अगेंस्ट श्रीलंका and congratulations to Sri Lanka because they won the game yesterday and first time they've gone this far in a tournament in the World Cup. So Sri Lanka scored 154 for 7 and Scotland 151 for 6. So it was a good win. But aaj we have a triple header. At this moment we've got Pakistan against Netherlands. Pakistan 126 for 6 in their 20 overs. Netherlands is chasing now 56 for 3 in 10 overs. So in 56 more, they need 71. And for both of them, they need a win because they will be the first points on the table for them. Thereafter, we've got West Indies taking Ireland, which will be a very good game. Then we got a massive game later on, the home nation, England, taking on New Zealand. So we'll give you all the updates as we go. And then we've got a very big game. Kal ko bahut hi bada game hai. South Africa, Bangladesh. And then you have a massive one in the afternoon, Australia, India. So we got great matches before we got to the semi-finals. Thank you so much.
0: Thank you, Kamalji.
1: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
2: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 10% on full week summer camp bookings with code LEICA10 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
1: Leica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi Mobile App. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 124 भारतीय रुपए, 367 पाकिस्तानी रुपए एंड 162 बांग्लादेशी टकास।
4: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: LEICA Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LEICA Radio.
0: So gold rate is 99.4 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116 266 4278.
0: तो चलिए समय आ गया है।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
0: समय आ गया है आज के कंपटीशन के विनर का नाम अनाउंस करने का। ये कंपटीशन गुजराती शो के बारे में था जिस जो होने जा रहा है संडे को, कल यानी कि 28th जून को, और लेस्टर में हो रहा है ये शो। और जो विनर बने होंगे उनको टिकट्स कलेक्ट करने होंगे वेन्यू बॉक्स ऑफिस पर जाकर। तो जो हमारे आज के इस कॉम्पिटिशन के विनर बने हैं उनका नाम है गौरव पटेल। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन गौरव जी, आपको मिलते हैं 2 टिकट सखना रहे जो हस्बैंड जी इस प्रोग्राम के, तो मजे के साथ देखकर आई और हमें जरूर बताइए कि ये शो आपको कैसा लगा। और बस इसी के साथ आपको बताती चलूं कि अगला गीत लेकर चलेगा न्यूज तक। न्यूज के उस पार अनुराग होंगे आपके साथ लाइका गोल्ड पर, फजीला होंगी लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर, एंड नीरज होंगे लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर। पर कल हम आपसे फिर मिलेंगे ढेर सारे गीतों के साथ, ढेर सारी बातों के साथ। कल होगी आपसे फिर से मुलाकात। बहुत सा ख्याल रखिए, एंड वंस अगेन गौरव पटेल जी, मैनी कांग्रेचुलेशंस, सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।
5: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
1: This is Leica Radio.
6: Lister, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
7: नहीं तो चलो Falcon Cash and Carry.
6: Samara Black Tea 1 kg 3.99. Elephant Medium Atta 25 kg 14.99. Falcon Brown Sugar 3 kg 3.99. Leila Basmati Rice 10 kg 11.99. Suhana Khaman Dhokla 500 gram 1.99. Falcon Red Lentils 1.5 kg 24.399. Parle Jee Multipack Biscuit 7.99 gram 1.99. Falcon Lemon Juice 250 ml 3 for 1. Falcon Cash and Carry,
7: 82 Assistant Street, LE12JU, या Rowlatt Hill, LE54UN.
6: Big deals, big savings, while stocks last.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
9: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
10: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
11: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
12: 105 शोज पूरा कर्या पछी हवे लेस्टर मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी नाटक।
13: जेज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखना रे जो हस्बैंड जी,
12: लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनो फुल डोज। 28 जून पीपल सेंटर लेस्टर मा बे शानदार शोज, बपोरे 2:30 अने सांजे 7 वागे। टिकट्स बुकिंग माटे कॉल करो मिस्टर B07860280655, मुंबई सैंडविच स्टेशन 07834832249 अथवा eventbrite.co.uk। सखना रे जो हस्बैंड जी।
14: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन।
15: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर।
14: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
15: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन।
14: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स।
15: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी।
14: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000।
15: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757। Greens by Danu, prime location,
14: high appreciation
15: in Dubai.
16: Sita aaj lanka khud jalane aayi.
17: This July, witness the rise of a new force.
16: Hi boys.
18: What's up?
17: Yashraj Films presents Alpha. Alpha stars Alia Bhatt and Shalvari in a high octane action spectacle alongside Bobby Deol and Anil Kapoor.
16: Jisse tumse baat karni hai, rok lo.
17: Produced by Aditya Chopra and directed by Shiv Rawal.
19: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है.
17: Don't miss India's biggest female-led action event.
19: India Alpha करेगा.
17: Alpha in cinemas from the 3rd of July.
20: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
21: When it comes to heart attacks, you might be surprised to hear the symptoms don't always feel severe. You could experience a squeezing across the chest, a feeling of unease, a sense something's not quite right. Don't be tempted to dismiss the signs and wait to see what happens. The faster you seek medical help, the better your chances. It's never too early to call 999 and describe your symptoms. Your NHS is here for you.
22: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it. You just dial 999. Use the FAST test. F, face, Has their face fallen on one side? Can they smile? A. Arms. Can they raise both arms and keep them there? S. Speech. Is their speech slurred? T. Time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast, make the call, dial 999.
1: Next, Nerij with Weekend Musty on Leica Radio. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

दो गीत आपने सुने बैक टू बैक और दोनों ही गीत बहुत खूबसूरत है। पहला गीत मैंने सुना था किंग अंकल फिल्म से, 1992 की फिल्म थी। दो आवाजें आपने सुनी, लता मंगेशकर एंड नितिन मुकेश जी की। और दूसरे गीत में भी नितिन जी का साथ दिया, साधना सरगम ने, और फिल्म का नाम था खून भरी मांग, जो 1988 में आई थी। उम्मीद करती हूँ दोनों गीत आपने पसंद किए। और आज इन दोनों गीतों को शामिल करने का एक मकसद ये भी है कि आज नितिन मुकेश अपना बर्थडे मना रहे हैं। 27 जून 1950 में उनका जन्म हुआ था। वो हिंदी फिल्म संगीत में अपनी भावपूर्ण आवाज और भजन बहुत इन्होंने गाए, उसके लिए मशहूर हैं। और शुरुआती जिंदगी में नितिन मुकेश का जन्म मशहूर गायक, आप सभी जानते हैं, मुकेश जी के घर हुआ था। बचपन से ही उन्हें संगीत का माहौल मिला और उन्होंने अपने पिता से ही गायन की शिक्षा भी ली थी। उन्होंने 1970 के दशक से बॉलीवुड में गाने गाने शुरू किए थे। तब ज़्यादा नहीं उनकी आवाज़ सामने आई थी, लेकिन कुछ एक गीत मशहूर हुए। 1980s और 90s के दशक में उन्होंने बहुत से लोकप्रिय गीत गाए, जिनमें से दो गीत तो आपने सुन लिए। उन्होंने बहुत से संगीतकारों के साथ काम किया है, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, बप्पी लहरी, नदीम श्रवण, और उनकी आवाज़ कई

0: उन्हें भजन और भावपूर्ण गीतों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। अपने पापा का नाम बहुत लेते हैं जब भी वो स्टेज पर आते हैं या किसी रियलिटी शो में आते हैं, और अपने पापा से वो बहुत इंस्पायर थे एंड उनके गाए हुए गीत भी वो बड़ी खूबी के साथ निभाते हैं विद फुल एक्टिंग। बट डिड यू नो कि वो फर्दर स्टडीज़ के लिए लंदन आए थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया था, लेकिन पढ़ाई में रुचि ना होने के कारण वो बीच में ही भारत लौट गए थे। गायक बनने से पहले उन्होंने मशहूर निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के साथ फिल्म नमक हराम में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया था। एंड यंग जब थे बहुत, तो वो सिगरेट पीने लगे थे, धूम्रपान का शौक रखा उन्होंने और पीने लगे, लेकिन उनके पिता महान गायक मुकेश जी ने उन्हें कहा कि अगर करियर बनाना है तो उसे छोड़ना होगा, तो उन्होंने छोड़ दिया। उनकी शुरुआती समय आसान नहीं था, उन्हें कई स्टेज शोज उन्होंने किए, लेकिन धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। सीधे बड़ी फिल्मों में शुरुआत उनकी नहीं हुई थी। और भी बहुत सी बातें हैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन पहले जरा देखा भूल गई ना सरिता, आपसे पूछा ही नहीं कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं और अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करें, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी भी। आजकल मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो यही कहूँगी कि तभी घर से बाहर निकलिएगा अगर बहुत ज़रूरी हो, अपने आप को धूप से बचा कर रखिएगा एंड डिहाइड्रेट ना हो, पानी पीते रहें या कुछ भी सॉफ्ट ड्रिंक्स भी अगर पीना चाहें तो पिए ज़रूर, लेकिन पानी पीना बहुत ज़रूरी है। सो गर्मी से बचने के लिए अपने को ठंडक वाले एरिया में रखिए, ना घर का भी वो कोना चुनिएगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। चलिए बहुत सी हिदायतें होगी और अब बढ़ते हैं आगे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भाई इनके जरिए अगर आप पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो your £1 in British sterling can get you up to 224 rupees and 15 paisas. But it depends कि कितना amount आप ट्रांसफर करा रहे हैं। जितने ज्यादा होंगे उतने अच्छे पैसे मिलेंगे आपको, उतना अच्छा रेट मिलेगा। Send money to India via SBI YONO app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: भाई आज के मैचेस के बारे में बता दें, पनामा और इंग्लैंड के बीच मैच होगा आज रात 10 बजे शुरू होगा, क्रोशिया एंड गाना के बीच में मैच होगा आज रात को 10 बजे ही, एंड इसके अलावा इजिप्ट एंड ईरान के बीच मैच हो रहा है आज शाम हो चुका है ये मैच एंड वन ऑल से जीते हैं एंड वन ऑल रहा मैं इनका स्कोर। एंड न्यूजीलैंड और बेल्जियम के बीच में मैच हुआ आज एंड 5-1 से, बेल्जियम 5 एंड न्यूजीलैंड 1। सो मैचेस होते रहेंगे, हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन एक सूचना और दे दें कि डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद अवर स्पॉन्सर रेक लॉ इफ यू मेंशन Leica.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio.
2: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
2: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक

0: बिस्किट 799 ग्राम 199, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
1: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN।
0: बिग डील्स, बिग सेविंग्स, व्हाइल स्टॉक्स लास्ट।
2: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिन्हें सब नु हसा हसा के लोट पोट कीता। ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
3: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
4: और टिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया।
2: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर द स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर द फेस्टिवल है।
5: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
6: Relax, I've booked the Uber already.
5: How? My roaming isn't even working yet.
6: I switched to Simsy before we left London.
5: Simsy? Since when are you the tech expert?
6: Since I decided I want a stress-free holiday.
7: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
8: T's and C's apply.
9: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
10: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
9: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
11: Save the date, Friday 3rd to Sunday the 5th of July, and Indian summer is back.
12: Presented by Inspirate, exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
11: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
12: Or sales at leicamedia.co.uk.
13: When it comes to heart attacks, you might be surprised to hear the symptoms don't always feel severe. You could experience a squeezing across the chest, a feeling of unease, a sense something's not quite right. Don't be tempted to dismiss the signs and wait to see what happens. The faster you seek medical help, the better your chances. It's never too early to call 999 and describe your symptoms. Your NHS is here for you.
14: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it. You just dial 999. Use the FAST test. F, face. Has their face fallen on one side? Can they smile? A, arms. Can they raise both arms and keep them there? S, speech. Is their speech slurred? T, time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast, make the call, dial 999.
15: Hey!

0: ऑल द लेजेंड्स इन दिस सॉन्ग, नितिन मुकेश के साथ किशोर दा, लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ें आपने सुनी. ब्यूटीफुल सॉन्ग. और ऐसे गीतों को कभी कभी जगह मिलती है प्रोग्राम में, तो आज मैंने प्ले किया है. मुझे उम्मीद है आपने पसंद किया और आप तक पहुंचाया.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Ye hai Leica Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: Another beautiful song, Nitin Mukesh ki awaaz mein. Is geet ko bhi bahut kam jagah milti hai. Kavita Krishnamurti saath de rahi hain from the film Ishwar.

0: Star Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Welcome to the jungle.
2: Film? Bilkul fake.
1: Hamari film army wali.
3: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
2: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
1: और स्टार कास्ट है
2: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
4: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
2: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ.
5: चलो तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
6: किस लिए फिल्म में.
7: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads, where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
8: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
9: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में.
10: Listen back to your favorite shows by logging on to LaikaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app. Another huge giveaway is coming. Laika Radio Network. Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: लता मंगेशकर और नितिन मुकेश जी की आवाजों में गाया हुआ ये गीत मैंने फिल्म मेरी जंग से चुना था, 1985 की फिल्म थी। एंड इस सावर का आगाज हुआ सिलसिला है प्यार का के एक बहुत ही प्यारे से दो गाने के साथ, अलका याग्निक एंड कुमार सानू ने अपनी आवाजें दी थी। और इन गीतों के जरिए हम याद कर रहे हैं NN सिप्पी साहब को, जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है। 27 जून 1931 में इनका जन्म हुआ था। प्रोमिनेंट इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, उनका वर्क जो है कैसा कितना काम किया उन्होंने, कितनी प्यारी प्यारी फिल्मों को या तो डिस्ट्रीब्यूट किया या फिर उन्हें प्रोड्यूस किया, लाइक वो कौन थी, गुमनाम, चोर मचाए शोर, फकीरा, कालीचरण, घर, सरगम, मेरी जंग और बहुत सारी फिल्में हैं। इनके बारे में भी जानकारी दूंगी जैसे जैसे समय इजाजत देगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, your £1 in British sterling can get you up to 124 rupees and 15 paisas. And agar aap paisa bhej rahe hain branch mein jaake SBI Yono app ko use karke, then by end of June se pehle agar aap jayenge to you will be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000 and a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
0: Right, by Egypt and Iran ke beech match ho chuka hai aaj 1-1, and aaj hi New Zealand and Belgium ke beech mein match hua 5-1 se, Belgium jeete, and Panama and England ke beech mein match ho raha hai raat ko 10 baje, and same Croatia and Ghana ke beech mein bhi मैच हो रहे हैं आज शाम 10 बजे। इसके साथ ही एक सूचना कि डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद अवर स्पॉन्सर, कौन है वो, रैक लॉ, इफ यू मेंशन लाइका।
1: दिस अपडेट वाज स्पॉन्सर्ड बाय रैक लॉ सॉलिसिटर्स, कॉल 0203 345 2000 और विजिट raklaw.co.uk। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Sarita Sabharwal with the biggest classics on Leica Radio.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: इन ब्यूटीफुल गीतों के साथ हम याद कर रहे हैं प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर NNCP साहब को. ये गीत मैंने सुना था फ्रॉम द फिल्म फकीरा, 1976 में आई थी ये फिल्म. और इसी के साथ अपने सभी सुनने वालों को बता दूं कि कंपटीशन में हिस्सा लेना है तो जरा ध्यान से सुन लीजिएगा. लाइक अ रेडियो नेटवर्क टीम अप विद जेज एंटरटेनमेंट फॉर अ चांस फॉर यू टू विन टू टिकट्स टू द गुजराती स्टेज कॉमेडी सखना रहे जो हस्बैंड. एंड इट फीचर्स लीना शाह एंड समीर शाह. इट टेक्स प्लेस ऑन संडे 28 जून, कल को होने वाला है, 2:30 PM एंड 7 PM एट पीपल सेंटर इन लेस्टर. इट्स PEEPUL पीपल. And send the word husband to the studio WhatsApp now. जी हाँ, अगर आप तभी हिस्सा लीजिए अगर आप जाना चाहते हैं लेस्टर. And these tickets are valid for 7 PM show at Leicester venue only. And winners will be able to collect tickets from the venue reception on the evening of the show. TNC apply. और जल्दी से मैं बता दूँ आपको कि आपने सिर्फ एक वर्ड लिखना है. अगर आप लेस्टर जा सकते हैं ये शो देखने के लिए, जिसका नाम है सखना रहे जो हस्बैंड. सो हस्बैंड लिखकर जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा और आपकी एंट्री मानी जाएगी कंपटीशन में. ठीक है.
0: सरिता सबरवाल विद द बिगेस्ट क्लासिक्स ऑन लाइका रेडियो. Women's Cricket Updates, presented by Carmel Prabhakar, are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
3: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
2: भई हमने कमल जी को फोन मिला दिया है और कमल जी अभी हमें बताएंगे कि क्या चल रहा है क्रिकेट के मैदान में. कमल जी वेलकम, एंड हमें जल्दी से बताइए कि क्रिकेट के मैदान में वेस्ट इंडीज एंड आयरलैंड की विमेन क्या कर रही हैं. बड़े नेक टू नेक चल रही हैं जी. कैसे हैं आप? हेलो कमल.
4: बस ठीक है सरिता जी, जी. आप कैसे हो?
2: मैं बिल्कुल ठीक. बताइए क्या हो रहा है वेस्ट इंडीज एंड आयरलैंड की विमेन के बीच में?
4: बहुत इंटरेस्टिंग गेम हो रहा. वेस्ट इंडीज 128/7 एंड अभी आयरलैंड चेस कर रहा है एंड दे आर चेसिंग वेल. 23 बॉल्स में 17 रन्स थे उनको. सो आई थिंक आयरलैंड माइट जस्ट डू इट एंड व्हाट अ ग्रेट विन फॉर देम इट वुड बी.
2: बिल्कुल.
4: हां जी. एंड
2: दे नीड 13 रन्स नाउ इन 22 बॉल्स. यस
4: या दैट्स राइट. और फिर उसके बाद सरिता जी वी हैव अ वेरी एक्साइटिंग गेम. Which is England versus New Zealand.
2: Yes.
4: Yeah, वो भी बहुत अच्छी गेम होगी और वेरी क्लोज गेम होगी बिकॉज दैट इज बोथ ऑफ देम नीड्स टू परफॉर्म एंड गेट यू नो गुड रन्स ऑन दैट.
2: जी.
4: सो एंड देन देयर वाज पाकिस्तान नेदरलैंड्स आगे अर्लियर. सो पाकिस्तान 126/6, नेदरलैंड्स 89 in 18 ओवर. सो पाकिस्तान के पहले पॉइंट्स मिले उनको टूर्नामेंट के.
2: जी 37 रन से जीत गए. हां जी
4: जी जी जी जी. सो देन दैट इज गुड फॉर टुडे एंड विल गिव यू द अपडेट फॉर द अदर्स. बट सरिता जी टुमारो वी गॉट अ मैसिव गेम व्हिच ऑस्ट्रेलिया इज टेकिंग ऑन इंडिया.
2: जी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में मैच होने वाला है. जी
4: कल को होगा. एंड देन आफ्टर दैट वी गॉट बिफोर दैट वी गॉट साउथ अफ्रीका बांग्लादेश. So morning 10:30 is South Africa Bangladesh and then 2:30 Australia India. So it will be the great points to have for the teams. India's game is very important because they'll need to win this to go forward and South Africa as well.
2: जी दोनों ही टीम बहुत अच्छी हैं. लेट्स सी. आप हैं ना, हमें बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे. थैंक यू कमल जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाय बाय.
0: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
3: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 10% on full-week summer camp bookings with code LEICA10 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
0: Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio.

0: What a beautiful, beautiful song by लता मंगेशकर, मदन मोहन जी का संगीत. वो कौन थी, फिल्म से चुना था मैंने. और इन गीतों के जरिए हम याद कर रहे हैं ग्रेट प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर NNCP. CP परिवार का काफ़ी योगदान रहा है. NNCP वॉज बॉर्न इन हैदराबाद सिंध में, जो कि अब पाकिस्तान में, इन 1931 आज ही के दिन. फिर बॉम्बे आ गए एंड बॉम्बे आए इनका परिवार भी इसी ट्रेड में था. NNCP's first film as a producer was Katil in 1959, and he followed it with another swashbuckler Rooplekha. Inki film badi chali thi, and the success of these films was the start of a legendary career for his banner NNCP Productions. 1964 mein NNCP teamed up with Raj Khosla for the suspense thriller Wo Kaun Thi, and the film starred Sadhana Manoj Kumar was a big, huge hit. And the film music was by Madan Mohan, अभी मैंने आपको बताया. And इसके बाद उन्होंने डायरेक्ट की थी गुमनाम 1965 की फिल्म, अगेन स्टारिंग मनोज कुमार, नंदा एंड महमूद, और ये भी सस्पेंस थ्रिलर थी. देन ही प्रोड्यूस संजीव कुमार राखी के साथ पारस इन 1971. बहुत से गीत सुनवाना चाहती हूँ लेकिन क्या करूँ. रेहाना सुल्तान की हार जीत, एंड देन नेक्स्ट वॉज चोर मचाए शोर, एंड शशि कपूर की ही रिवाइव्ड शशि कपूर करियर एंड इंट्रोड्यूस्ड कंपोजर रविंद्र जैन, एंड ही अगेन कास्ट शशि कपूर इन फकीरा इन 1976, और ही ऑल्सो विच एस्टेब्लिश्ड शबाना आजमी इन कमर्शियल सिनेमा. बहुत सी बातें हैं, बताती रहूंगी आपको.
1: Like extra podcast updates.
0: Right, we next episode is out. Pride Month, Tradition and Taboos. And Radio Wali is the host for this program. This episode, we explore the realities of being part of LGBTQ plus community in a world that is still leaning in to understand. This episode is not just about relationship. Laika Extra podcast jo hai, it is available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
1: Laika Extra is here. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
2: Laika Radio. Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
3: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
2: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
3: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
2: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
3: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
2: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
4: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिने सबनु हसा हसा के लोटपोट कीता.
5: की कह रहे हो?
4: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता.
5: की कह रहे हो?
6: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
5: पर टिल्लो ने काला कोट एवे नहीं पाया.
4: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है.
7: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
8: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
7: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
8: And you didn't pay those massive roaming charges?
7: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
9: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
10: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
11: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जैमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
10: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जैमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
1: Laika Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
12: जी टीवी HD पर देखिए साहस और जज्बे की नई कहानी
13: जगदात्री,
12: जिसमें माँ गौरी की सरलता बसती है।
13: माला ले आना। लाया जी।
12: वो वक्त आने पर महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती है।
14: टीम, गेट रेडी फॉर द एक्शन।
12: जिसके शांत स्वभाव में भी छिपा हो शेरनी का रूप, वो है जगधात्री। देखिए रोज रात 8:30 ZTV HD और Z5 पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394।
15: Location.
16: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
15: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
16: located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
15: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
16: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
15: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
16: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu, prime location,
15: high appreciation
16: in Dubai. Punjab, the biggest tunes, non-stop.

0: मुकेश एंड लता जी की आवाज़ें शामिल थी फिल्म पारस के इस गीत में, और इस फिल्म को भी NNCP साहब ने प्रोड्यूस किया था. NNCP मैरिड चंपा नारी सिप्पी, और ही फैमिली लिव्ड इन मुंबई एंड ही डाइड ऑन नवंबर द 7, 2006 में इन मुंबई एट द एज ऑफ 75. एंड 20 साल तक उन्होंने ही सर्व्ड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन मोशन पिक्चर डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन. ही वॉज द मेंटर ऑफ सो मैनी, यू नो, जैसे गुमनाम के लिए ही लॉन्च द फेमस एडिटर वामांग एंड गुरु, एंड दे रिमेन ऑन टॉप ऑफ देयर ब्रैकेट टिल द अर्ली 90s. शतरंज में वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रेयर को प्रोडक्शन एंड अ रेयर मूवी विच कॉस्टेड amount of 1 crore that time. चोर मचाए शोर में रविंद्र जैन को ये वापस लेकर आए थे एज ए कंपोजर. ऐसे बहुत सारे फकीरा में ही एक्टेड एज ए कमर्शियल लॉन्च पैड फॉर शबाना आजमी. ऐसी बहुत सी बातें NNCP के साथ जुड़ी.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you today at this minute. Indian rupees 124.55, Pakistani rupees 367.71, Sri Lankan rupee 443.71, Bangladeshi taka 162.33, Afghani 85.32, and US dollars 1.31.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LIKA Radio. LIKA Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Right, gold ka rate is with market mein 99 pounds and 60 pence per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: Lister, itna sasta deal dekha hai kabhi?
4: Nahi, to chalo Falcon Cash and Carry.
3: Samara Black Tea, 1 kg, 3.99. Elephant Medium Atta, 25 kg, 14.99. Falcon Brown Sugar, 3 kg, 3.99. Leila Basmati Rice, 10 kg, 11.99. Suhana Khaman Dhokla, 500 gram, 1.99. Falcon Red Lentils, 1.5 kg, 24.399. Parle Ji Multipack Biscuits, 99 gram, 1.99. Falcon Lemon Juice, 250 ml, 3 for 1. Falcon Cash and Carry,
4: 82 Assistant Street, LE12JU, yeah, Rowlett Hill, LE54UN.
3: Big deals, big savings, while stocks last.
5: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
6: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203 7736333 नाउ. एप्ट बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल Mantra.
7: The theatrical blockbuster Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding is back for a third season. This time there's a wedding, a secret and a murder.
8: OMG!
7: Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding 3, The Murder Mystery. As the celebrations begin, the truth turns deadly.
8: Murder Mystery!
7: That's in Leicester on the 4th of July at the Curve Theatre and Birmingham on the 26th of July at the Alexandra Theatre. Get your tickets now before the killer gets away. MKDW.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
9: Welcome to the jungle.
10: Film, bilkul fake.
9: Hamari film army wali.
11: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
10: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
9: उसका कास्ट है
3: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
8: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
3: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ।
8: पहले तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
12: मैं किस लिए फिल्म में?
13: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
1: ये है लाइका गोल्ड 2।

बैक टू बैक दो गाने आपने सुने, पहला गीत था 1942 अ लव स्टोरी का और दूसरा गीत था फिल्म सागर से चुना। दोनों का संगीत तैयार किया था महान संगीतकार आरटी बर्मन साहब ने। आरटी बर्मन साहब को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे याद कर रही हूँ मैं। भारतीय सिनेमा में कई महान संगीतकार और उन्होंने अपने दौर को यादगार बनाया, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने वक्त के नहीं होते बल्कि आने वाली पीढ़ियां जो जेनरेशंस जो हैं उनके वो बन जाते हैं। आर डी बर्मन साहब जिन्हें दुनिया प्यार से पंचम दा के नाम से जानती है, उन्हीं एक्सक्लूसिव कलाकारों में शामिल हैं। उनकी धुनें सिर्फ गाने नहीं थे बल्कि भावनाएं, इमोशंस, एक्सपेरिमेंट्स, मॉडर्न सोच थी उनकी, तो में मॉडर्न सोच की वो संगम था एंड जो आज भी उतना ही फ्रेश महसूस होता है जितना 40 से 50 साल पहले होता था। जैसे कि पहले आपने गीत सुना फिल्म सागर का, सागर प्रूव टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग बॉलीवुड एल्बम्स ऑफ द डेकेड एंड गॉट हिम अ नॉमिनेशन इन द फिल्म बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर की कैटेगरी में। उनकी 33rd फिल्म फेयर अवार्ड में इन्हें नॉमिनेट किया गया था फॉर सागर। देन केम 1942 अ लव स्टोरी, उसका क्या कहना। म्यूजिक वॉज अ ह्यूज हिट एंड द 3rd बेस्ट सेलिंग हिंदी फिल्म एल्बम थी 1994 की एक लड़की को देखा, ये गाना था उसमें, कुछ ना कहो, रिम झिम, ऐसे बहुत से, प्यार हुआ चुपके से, संग बाय कविता कृष्णमूर्ति। लेकिन बर्मन दा अपनी ये सक्सेस देखने से पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। He died few days before the release of the film and was उनको उनकी डेथ के बाद उन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला था फॉर दिस फिल्म एंड दैट वाज हिज 3rd बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड एट द 40th फिल्म फेयर अवार्ड्स। सो ऐसे बहुत से अवार्ड्स उन्हें मिले और सबसे बड़ा तो अवार्ड यही है कि आज भी दुनिया उनसे बहुत प्यार करती है, उनके संगीत को बहुत बहुत लाइक करती है। एंड मुझे याद है कि बहुत देर पहले मैंने अभिजीत भट्टाचार्य जी को इंटरव्यू किया था व्हेन ही केम हियर फॉर द स्टेज शो। आई एम टॉकिंग अबाउट 94-95 की बात है एंड ही केम हियर, तो मैंने उन्हें इंटरव्यू किया और पूछा उनकी स्ट्रगल के बारे में सब कुछ। एंड ही सेड कि अगर मुझे म्यूजिक डायरेक्टर्स का नाम लेना है तो 1 से लेकर 10 तक मैं सिर्फ आर डी बर्मन यानी राहुल देव बर्मन जी का नाम लूँगा, उसके बाद फिर मैं दूसरे संगीतकारों का नाम ले सकता।

0: 15 pesos, or send money to India via SBI YONO app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate and for other legal requirements.
0: भी आज न्यूजीलैंड एंड बेल्जियम के बीच में मैच हुआ, 5-1 से जीते बेल्जियम, एंड इजिप्ट एंड ईरान के बीच में मैच हो चुका है और 1-1 था जिनका स्कोर, एंड आज रात को होने वाला क्रोशिया एंड गाना के बीच में मैच 10 बजे, एंड सेम ग्रुप 1 का मैच है पनामा एंड इंग्लैंड के बीच रात 10 बजे. और ये बताते हैं कि डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद अवर स्पॉन्सर रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Sarita Sabharwal with the biggest classics on Leica Radio.
3: 105 शोज पूरा कर्या पछी हवे लेस्टर मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी नाटक.
4: जेज एंटरटेनमेंट लाइने आवी रह्या छे सखणा रे जो हसबंड जी
3: लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनो फुल डोज 28 जून पीपल सेंटर लेस्टर मा बे शानदार शोज बपोरे 8 वागे अने सांजे 7 वागे. टिकट्स बुकिंग माटे कॉल करो मिस्टर B07860280655 मुंबई सैंडविच स्टेशन 07834832249 अथवा eventbrite.co.uk.
5: Location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: ZTV HD पर देखिए नई कहानी तू ही रे दिल में.
8: स्वाति, जब से लाइफ में आई है लाइफ ना कंप्लीट सी लगती है.
9: इतना ही प्यार हमेशा रहेगा ना संजय.
10: मगर नियति को क्या कुछ और ही है मंजूर.
11: वृंदा तेरे सपनों का राजकुमार अब सच में तेरा होने जा रहा है.
10: 3 मासूम जिंदगियां किस्मत के जाल में.
7: तू ही रे दिल में रोज शाम 5 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394 एंड Z5 ऐप.
12: हेरल्ड न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल्स फॉर रेस्टोरेंट्स, कैफेज, केटरर्स, फूड टेकअवेज एंड फूड डिलीवरी सर्विसेज. ऑर्डर योर फ्री हेरल्ड कैटलॉग टुडे. कॉल ऑन 0208-507-7900 और डाउनलोड द कैटलॉग फ्रॉम heraldplastic.com. हेरल्ड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ हाई क्वालिटी इको फ्रेंडली एंड कॉस्ट इफेक्टिव डिस्पोजेबल्स फॉर रेस्टोरेंट्स, कैफेज, केटरर्स, फूड टेकअवे एंड डिलीवरी businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
13: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
14: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
13: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
15: Think you might be overpaying for card payments? Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Leica or call 0203-129-9840.
1: Leicester Mellor is back with exclusive radio partner.

0: 1969 में ये धुन बनी थी और आज भी सुने तो कितनी फ्रेश लगती है। यही तो कमाल था आर डी बर्मन साहब का। और ये गीत पिक्चराइज हुआ था किस पर? जितेंद्र जी पर। जितेंद्र और हेमा मालिनी ने इस फिल्म में काम किया था। फिल्म का नाम था वारिस और आर डी बर्मन साहब का था संगीत। ऐसा ही बहुत खूबसूरत संगीत और इन गीतों को हम कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। यूथ के बीच में भी वो बहुत लोकप्रिय अब भी हैं, क्योंकि अब भी जब यूथ जो जनरेशन है वो इन गीतों को सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये गीत इतने पुराने नहीं हो सकते हैं। उन्हें ये धुनें बहुत अच्छी लगती हैं। उनकी धुनें पुराने दौर की याद भी दिलाती हैं और मॉडर्न संगीत का एहसास भी कराती हैं। कुछ गीत जो हमेशा अमर रहेंगे जैसे दम मारो दम, ये सिर्फ एक गीत नहीं था बल्कि उस दौर के युवाओं की सोच और आज़ादी का प्रतीक बन गया था। उनकी धुन और रिदम आज भी लोगों को झूमने पर मजबूर कर देती है। वैसे तो जो गीत अभी अभी आपने सुना वो भी झूमने को मजबूर करती है। कौन कौन डांस कर रहा था जल्दी से बता दीजिएगा। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, रोमांटिक गीतों की दुनिया में आज भी एक मानक माना जाता है। इसकी शुरुआत गिटार ट्यून से सुनते हैं हम गिटार इन द बिगनिंग, लेकिन वो एक पहचान बन चुकी है। महबूबा महबूबा में उन्होंने भारतीय और मध्य पूर्वी संगीत का ऐसा मिश्रण पेश किया जो उस समय बिल्कुल नया था और इस गीत में उनकी अपनी आवाज भी लोगों को खूब पसंद आई थी। याद है ना, महबूबा शोले के गीत की बात कर रही हूँ। ओ मेरे दिल के चैन, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे ये शाम मस्तानी, रहना बीती जाए, हम तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना, देन मुसाफिर हूँ यारो पिया तू अब तो आ जा, मेरे नैना सावन भादो। ये गीत कहाँ भूल सकते हैं हम। किस किस गीत को जगा दे सरिता, लेकिन अब अगला गीत सुनाना भी ज़रूरी है और उससे पहले जो हमारे विनर हैं उनका नाम भी बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने कल प्लान करना है, जाएंगे लेस्टर क्या देखने के लिए, देखने जाएंगे सुखाना रहे जो हस्बैंड, और ये हैं मिस्टर हर्षद लैड। हर्षद जी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आपकी टिकट वहाँ वेन्यू पर होगी और वहाँ जाकर आप ये शो देख सकते हैं। हमारी टीम भी आपसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करेगी और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आइए अब डेरी वैली की तरफ देखें कि उन्होंने कौन सा गीत चुना है।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: So R.D. Barman sahab ki kuch dhune aapne suni. He was not just a music director, balki Bhartiya film sangeet mein ek aisa yug ke nirmata the, jinhone ye sabit kiya ki kalpana, sahas aur prayog mil jayein, to sangeet samay ki सीमाओं को पार कर जाता है. यही वजह है कि पंचमदा आज भी हर नई पीढ़ी के लिए उतने ही प्रिय हैं जितने उस दौर में थे. उनकी धुनें सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती, और शायद यही किसी महान संगीतकार की सबसे बड़ी पहचान होती है.
2: Like a Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 124.53, Pakistani rupee 367.5, Sri Lankan rupees 443.65, Bangladeshi taka 162.31, Afghanis 85.31, and US dollars 1.31.
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on LIKA Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
1: Gold ka rate is worth market mein chal raha 99 pounds and 60 pence per gram.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
4: LIKA Radio.
5: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m. LIKA Gold and LIKA Radio Midlands.
2: LIKA Radio.
1: जी हाँ, ये लाइका गोल्ड लाइका रेडियो नेटवर्क के जरिए मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच रही है, जहां भी बैठे आप सुन रहे थे. उम्मीद करती हूँ मेरा साथ आपने पसंद किया. आज हमने नितिन मुकेश जी की बर्थडे मनाया, उसके साथ साथ एनएन सिप्पी साहब को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे याद किया, एंड राहुल देव बर्मन जी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे याद किया. उम्मीद करती हूँ मेरे चुने गीत, मेरी बातचीत आप के मन को भाई. अब मेरे जाने का वक्त है और सैंडी शाह जी के आने का वक्त है. सैंडी विल बी हेयर विद विंटेज गोल्ड 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, और उसके बाद आप ओवरनाइट सर्विस में गोल्ड नाइट्स में हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे गीत सुनेंगे. और दूसरी तरफ आ रही हैं सोनिया, उनका साथ दीजिए मुझे. माइक्रोफोन के इस तरफ से इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे. बाय, टेक केयर.
6: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
7: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी.
6: समारा ब्लैक टी 1 kg 399, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 399, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 g 199, फाल्कन रेड लेंटल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 799 g 199, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1. Falcon Cash and Carry,
7: 82 Assistant Street, LE12JU, yeah, Rowlett Hill, LE54UN.
6: Big deals, big savings, while stocks last.
8: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungala and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting, dizzy twist. Coming to the Belgrade Theatre, Coventry, 16th to the 19th of July. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, panto fun for all the family.
9: Radio partner LIKA Radio.
10: Southall travel 7 days a week. Southall travel 24 hours a day. We're at our peak.
11: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
10: Southall Travel.
12: call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
13: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
14: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉरपोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
15: सीता आज लंका खुद चलाने आई.
16: This July, witness the rise of a new force.
15: Hi boys.
17: What's up?
16: Yashraj Films presents Alpha. Alpha stars Alia Bhatt and Shalvari in a high-octane action spectacle alongside Bobby Deol and Anil Kapoor.
15: जिसे तुमसे बात करनी है, रोक लो.
16: Produced by Aditya Chopra and directed by Shiv Rawal.
18: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है.
16: Don't miss India's biggest female-led action event.
18: India Alpha से डरेगा.
16: Alpha in cinemas from the 3rd of July.
19: Teachers, tutors और educators के लिए एक special opportunity. RoboThink UK expand कर रहा है. Become a confirmed franchise partner and receive a robotics kit package worth over £7,500. Parents can also save 10% off. On full week summer camps with code LIKA10. Visit book.robothink.co.uk/LIKA.
20: Be part of a historic grand opening.
19: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once in a lifetime spiritual journey.
20: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
19: Departure 5th of September. Call now on 02 03 773 633.
20: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
21: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
22: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
23: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
22: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
23: दिल तो टूट पे गया,
22: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
24: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
22: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी. गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT394.
25: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
26: This is Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, the Midlands, and Greater Manchester.

0: Visha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network. The Leica Group, home of Leica Radio and Leica Gold.

0: Visit your nearest branch.
1: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
0: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
1: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
2: Weddings, celebrations, corporate events. At Rugasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit rugasan.com to begin your journey. Rugasan, locate, design, manage, cater.
3: Welcome to the jungle.
4: Film बिल्कुल fake.
3: हमारी film army वाली.
5: और उसके लिए आप सभी को training की जरूरत है.
4: Danger एकदम real और survival skills zero.
3: और star cast है.
4: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल and a huge star cast bring jungle madness to cinemas.
6: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने gun पकड़ा था क्या?
4: Watch Welcome to the Jungle in cinemas now.
7: पहले तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं.
8: मैं किस लिए फिल्म में?
9: बिजनेस के कार्ड पेमेंट चार्जेस देख के कभी सोचा है
10: यार मैं कहीं ज्यादा तो नहीं दे रहा? पता लगाने का एक ही तरीका है, अपना लेटेस्ट स्टेटमेंट TW Pays को भेजिए और 24 आवर्स में पाइए एक फ्री कंपैरिजन कोड. विजिट twpays.com/laika या कॉल कीजिए 02031299840. TW Pays, हर ट्रांजैक्शन पर ज्यादा बचत.
11: न्यू हिट्स ऑन लाइका रेडियो.

0: Biker Radio.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान। फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
3: साउथ हॉल ट्रेवल, एट protected.
4: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
5: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
4: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
5: And you didn't pay those massive roaming charges?
4: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
6: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
7: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. And Indian summer is back.
8: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
7: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
8: Or sales at leicamedia.co.uk.
9: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think, don't let your speed creep.

0: 07860-280-655, Mumbai Sandwich Station 07834832249, Athwa eventbride.co.uk. Sakina Rejo, Hasbar Ji.
1: Welcome to the jungle.
2: Film bilkul fake.
1: Hamari film army wali.
3: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
2: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
1: और स्टार कास्ट है
2: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
4: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
2: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ.
5: पहले तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
6: किस लिए फिल्म में.
7: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है.
8: ऑर्डर ऑनलाइन एट pujasweets.com. फ्रॉम बर्फी, लड्डूज, गुलाब जामुन टू समोसा एंड गाठिया. फ्रॉम केटरिंग स्टार्टर्स टू डिजर्ट, पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज.
9: अभी कॉल कीजिए 0116-202-1222 और विजिट मेल्टन रोड LE4 5EA.
8: पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज.
10: जी टीवी HD पर देखिए साहस और जज्बे की नई कहानी
11: जगदात्री,
10: जिसमें माँ गौरी की सरलता बसती है.
11: माला ले आना. लाइया जी.
10: वो वक्त आने पर महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती है.
12: टीम गेट रेडी फॉर द एक्शन.
10: जिसके शांत स्वभाव में भी छिपा हो शेरनी का रूप, वो है जगधात्री. देखिए रोज रात 8:30 जी टीवी HD और Z5 पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394.
13: पंजाब दी बिगेस्ट ट्यून्स.

लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो डॉट कॉम ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी. This is Laika Radio, part of the Laika Radio Network. 7 stations, 1 podcast, 1 mobile app. Advertise on Laika Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at laikamedia.co.uk. Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Laika Radio.

0: Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith, Hamari Ram.
1: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamari Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
0: Exclusive radio partner, Leica Radio.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
3: साउथ हॉल ट्रेवल एट Protected.
4: CTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से
5: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है
6: खुद से भी ज्यादा
4: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में
6: जो बात मेरे दिल में है वही बात आर्य सर के दिल में भी है
4: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे CTV HD पर अवेलेबल ऑन Sky 707 Sky Glass 714 Virgin Media 809 BT394
0: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Leica Radio.